0: हाय बेबी,
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रही मतलब?
1: मींस आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट। जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूं।

0: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
1: सही है भाई,
0: मजा ही मजा है ब्रो। चलो शुरू करते हैं।

0: घर पे बहुत बोर हो रही
1: हूँ।
0: कहीं चले?
1: कहाँ?
0: कश्मीर?
1: इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग्स हैं। अगले महीने?

0: मामी।
1: ये आयशा सिगरेट पीती है।
0: मुझे पता है माँ। अरे वो कभी कभार ऐसे ही।
1: पता है तुझे? तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए। ये इस घर में नहीं चलेगा।
0: अरे तो माँ लिखती है अंदर, दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना। ऐसा करता हूँ, मैं बोलता हूँ।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2020-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: होइन, एक्लै बसेर के सोचिरहेको?
2: ए, तिमी पो नयाँ मोबाइल किन्

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-24-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: जथाभावी फोहोर नफाल्न ग्लिन गोर्खाको अत्यन्त जरुरी सूचना।
3: नगरपालिका क्षेत्रभित्र जथाभावी